0: This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
1: Duniya ne bada bhayankar ek roop dekha hai in dino. Resources ka weaponization ho raha. Avishwas ka vatavaran. विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है
0: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
1: जिनका असर आज दिखाई दे यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए साथियों पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यगर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है साथियों मैं जानता हूं कि अगर मैंने अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है तो सारा मीडिया सारी स्क्रीन्स सारे न्यूज़पेपर